0: गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में सम्पन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: साथियों, आज की बात इस सुविचार के साथ कि कर्म करें फल की इच्छा न रखें। गीता का ये सार श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का अर्जुन से संवाद, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी जीविका जीवन का आधार सिर्फ कर्म करने तक है और उसके परिणाम पर हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है।
1: जी हाँ, नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर और कार्यक्रम है घर आंगन, और साथ ही साथ हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। और मैं हूँ आज आपके साथ प्रतिभा और
0: मनीषा। तो स्वीकारे हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, अपने कर्तव्य और उसे पूरी निष्ठा से निभाने और परिणाम की चिंता से मुक्त रहने की सीख है निस्वार्थ कर्म, जो मन को शांति देता है और संतुलित भी बनाता है।

0: गीता के जिस संदेश की हम बात कर रहे थे उसे आज के जीवन में निभाना, उसे अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी हो जाता है, जहाँ प्रतियोगिता है, मानसिक दबाव है और ऐसे में संतुलन ही जीवन की कला है।
1: क्योंकि जब कर्म पूजा बन जाए तो सफलता स्वयं ही प्रसाद हो जाती है।

0: मनहर और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी पूरब और पश्चिम।
1: साथियों, सूत्र वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी अधिक से अधिक लोगों का कल्याण और अधिक से अधिक लोगों के सुख का मार्ग प्रशस्त करना, इस ध्येय वाक्य के साथ 90 वर्षों से सतत देश की धड़कन बना हुआ है आकाशवाणी।
0: दोस्तों, 1936 प्रसारण की दुनिया में ये साल भारत के इतिहास में दर्ज आजादी से पहले की वो आवाज है जो आज 140 करोड़ श्रोताओं तक निर्बाध पहुंच रही है।
1: जानते हैं, शुरुआती दिनों में प्रसारण के इस विकास यात्रा को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बीबीसी के लियोनेल फील्डन की सेवाएं ली। वे प्रसारण नियंत्रक के रूप में भारत में 1935 में यहाँ आए
0: और दिल्ली स्थित हमारे इस केंद्रीय रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ 1936 में नए साल के दिन। फिर शुरू हुई रेडियो के विस्तार की योजना और प्रक्रिया।
1: और जानते हैं, इस दौरान तकनीकी विशेषज्ञों में बीबीसी के अभियंता एचएल किर के भारत आए। लियोनेल के साथ जिस योजना को उन्होंने तैयार किया उसे बीबीसी के मुख्य अभियंता सीडब्ल्यू गोइडर के संशोधनों के बाद अपनाया गया। दोस्तों,
0: यानी सन 1936 का वर्ष भारत के प्रसारण इतिहास में बना मील का पत्थर, देश की विश्वसनीयता का परिचायक आकाशवाणी। तब से शुरू ये सफर आज जन जन की आवाज है। जय हिंद, जय भारत।

0: तेरे सुर और मेरे गीत। इस गीत को आप सुन रहे थे गूंज उठी शहनाई फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे सुर से सुर मिलाने के लिए आपको जुड़ना होगा fmgold@gmail.com पर अपने संदेशों के जरिए। तो बने रहें FM Gold 100.1 में घर आंगन के साथ।
1: प्रतीक महाराणा प्रताप जी को, जिनकी जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के रूप में मनाई जाती है। 1540 में जन्मे महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और आज भी शौर्य और पराक्रम की अविस्मरणीय मिसाल हैं वो।
0: इसी दिन याद करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, दार्शनिक और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी को, जिनकी 165वीं जयंती मनाई जा रही है।
1: बंगाल में जन्मे टैगोर, जिन्हें साहित्य और कला के क्षेत्र में अपार ख्याति प्राप्त है, बंगाल साहित्य में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है।
0: जिनका जन्म बंगाली कैलेंडर के अनुसार दोस्तों हर साल मई माह के शुरुआती दिनों में मनाया जाता है और बंगाली पंचांग के अनुसार टैगोर जी का जन्म बोईशाख महीने की 25 तारीख को माना गया है। इसलिए तिथि के अनुसार इस साल उनकी जयंती 9 मई यानी आज के दिन मनाई जा रही है।
1: और देखो मनीषा, साथ ही आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी नेता, समाज सुधारक और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी की भी जयंती है। 9 मई 1866 में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम के इस वीर को भी हम आज नमन करते हैं।
0: तो सुनते रहिए, गुनते रहिए, सीखते रहिए देश की प्रेरणाओं से आगे बढ़ने और बेहतर करने का हुनर FM गोल्ड के।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना सहरा फिल्म से इस गीत को।
1: श्रोताओं, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है, जो मई महीने के हर दूसरे शनिवार को हर साल मनाया जाता है।
0: और प्रकृति ने न दोस्तों हमें वनस्पतियों के साथ साथ पशु पक्षियों की प्रजातियां भी सौगात के रूप में दी हैं। मानते हैं ना आप इस बात को, क्योंकि ये इतने अनमोल हैं कि हम सभी के आंगन में हमारी नींद खुलने से पहले चहक चहक कर हमें जगाते हैं। तो ये जो विलुप्त होती हुई कुछ पक्षियों की प्रजाति है, उनको संरक्षित करने के लिए ही हम आज का दिन मनाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने मनीषा, देखो आज का दिन प्रवासी पक्षियों की आबादी को प्रभावित करने वाले कारकों पर डेटा एकत्र करने में जन भागीदारी की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
0: इसमें पक्षियों की गिनती से लेकर सर्वेक्षण और योजनाएं शामिल होती हैं दोस्तों।
1: देखो ना केवल योजनाएं, बल्कि आज के इस अवसर पर जो ये जो आज का जो दिन मनाया जा रहा है, तुम जानती हो कि 100 से अधिक देशों में आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
0: प्रवासी जो पक्षी होते हैं, उनकी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में देखने के लिए एक सुनहरा अवसर देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं दोस्तों, ताकि हम इसके लिए सक्रिय भागीदारी रख सकें।
1: बिल्कुल, और देखो प्रवासी पक्षियों की सुंदरता और महत्व से प्रेरित रचनात्मक कृतियां भी बनाई जाती हैं।
0: वाह क्या बात बताई तुमने प्रतिभा। और पक्षियों के लिए जो अनुकूल शहरी नियोजन हो सकता है, जैसे जैव विविधता पर उनके लिए जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इसमें भी शिरकत करने से हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है साथियों।
1: बिल्कुल, और देखो पार्कों, चिड़ियाघरों और संग्रहालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में, जिनमें सभी उम्र के लोगों के लिए गतिविधियां शामिल होती हैं,
0: उनमें शामिल अगर हम होंगे तो हम अपने आसपास

0: पक्षी साथियों को या ये जो प्रवासी पक्षी हैं इनको संरक्षित करने के रास्ते में उस दिशा में वो ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरीके की जो भी गतिविधियां हैं उसमें थोड़ा सा समय निकालकर सहभागी जरूर बनिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा। देखो साथ ही जो प्रवासी पक्षियों के आवासों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन तथा आवासों के नुकसान जैसे खतरों से निपटने के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए आज के दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
0: होने भी चाहिए, है ना प्रतिभा। और ये जो पशु पक्षी हैं वो हमारी प्रकृति की धरोहर हैं दोस्तों। इन्हें बचाए रखने में हमें भी अपना योगदान जरूर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप?

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना फिल्म अनाड़ी से। देश की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित भी कर रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने प्रतिभा, क्योंकि महिलाएं सिर्फ घर तक अब सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित कर चुकी हैं और कर रही हैं। शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और व्यापार, कोई भी क्षेत्र हो, भारतीय महिलाओं ने हर जगह अपना सिक्का अब स्थापित कर लिया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मनीषा तुमने। कल्पना चावला, पीटी उषा।

0: मजूमदार शॉ, फाल्गुनी नायर, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, ऐसी महिलाओं के जो हम नाम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी प्रतिभा सरकार की जो नीतियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, समाज के बदलते दृष्टिकोण को जिस तरीके से महिलाओं के लिए नए अवसर के द्वार हमारी सरकार, हमारी जो आसपास की नीतियां हैं, वो जिस तरीके से सुअवसर दे रही हैं, तो ये तो होना ही है। और भारतीय संस्कृति में हमारी जो महिला है वो सदैव से सम्मान के लिए हमेशा जानी जाती हैं और उन्हें वो सम्मान मिला ही है। और वर्तमान में जो हमारी केंद्र सरकार है, उनकी नीतियों से महिलाओं को और भी अधिक सशक्त बनाने की दिशा में और भी नए रास्ते खुल रहे हैं। क्या कहती हो?
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो मनीषा। तुम देखो, सशक्त नारी सशक्त भारत एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है इस दिशा में। और इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को राजनीति और निर्णय लेने में समान भागीदारी देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।
1: बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगी साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और लखपति दीदी योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार और ऋण सुविधा देकर और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।
0: बिल्कुल ठीक। और देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
1: हाँ, साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत आज परिवार में स्वच्छ ईंधन पहुँचाकर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
0: देखो मनीषा, सशक्त महिला जो होती है वो घर की नींव और राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। यह पहल केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये अभियान महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सबल बनाकर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी पड़ोसन।
1: और श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं। तो fmgoldga@gmail.com पर आपके संदेशों की प्रतीक्षा है हमें। लेकिन इसी के साथ हम बताना चाहते हैं कि कुछ हमारे श्रोता साथी हैं जिन्होंने इस प्रतीक्षा को हमारी खत्म कर दिया है, और वो हैं हमारे नियमित श्रोता साथी, हमारे साथ नवीन भाटिया जी मोती नगर नई दिल्ली से, जिनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, और हमेशा की तरह आज भी वो बहुत ही आनंदित हो रहे हैं इस कार्यक्रम के साथ। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरह हमारे एक और श्रोता साथी हैं जिन्होंने हमें कहा है, प्रतिभा बिटिया और मनीषा बिटिया आप दोनों को राम राम जी, आपको भी राम राम। और ये हैं गौरी शंकर जी नांगलोई से, और इन्होंने कहा है कि अच्छा इंसान जो है वो कर्म करने से ही आगे बढ़ता है, उसी तरह पशु पक्षी से भी हमें सीखना चाहिए और अपने कर्म को अच्छी तरह से निभाते रहना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने दिया, और आपके इन संदेशों को निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी कोशिश होती है दोस्तों कि हम सभी जीवन के हर आनंद में आगे बढ़े, क्योंकि जीवन के हर आयाम में हम खुशियां तभी पाते हैं जब हम प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और अच्छी मानवीय भावनाओं को अपने अंदर लेते हुए जीवन की खुशियों को अपनी आंखों में समेटते हुए चलते रहते हैं, साथ साथ में गाते गुनगुनाते। तो चलिए फिर से गुनगुनाते हैं इस गीत के साथ, हमारे साथ आप भी जुड़िए और खुश हो जाइए।

0: अनुशासन सफल जीवन की पहली सीढ़ी होता है।
1: जीवन
0: में अगर व्यक्ति अनुशासित है ना, तो वो सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति जीवन के हर पड़ाव पर सजग और सचेत रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है, चाहे वो शिक्षा हो या करियर हो या रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा उठना बैठना ही क्यों ना हो, सब कुछ अनुशासित होने से अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, और देखो अनुशासन फिटनेस का आधार भी है। फिटनेस का मतलब केवल जिम जाना नहीं बल्कि एक अनुशासित जीवन शैली है, क्योंकि अनुशासन वो ताकत है जो प्रेरणा के खत्म होने के बाद भी आपको कसरत और सही खानपान जारी रखने में मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, फिटनेस केवल एक अस्थायी लक्ष्य नहीं है साथियों, ये हमारे श्रोता साथी भी जानते होंगे, बल्कि एक जीवन शैली है ना, जिसे बनाए रखने के लिए अनुशासित होना हम सभी का बहुत जरूरी है।
0: तो भाई मनीषा, क्यों ना आज बात करें कि अनुशासन फिटनेस के लिए क्यों और कैसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और मैं बताना चाहूंगी अपने दोस्तों को, उन्हें वैसे पता ही होगा कि अनुशासन का जो मूल मंत्र है वो है निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी, यानी जब व्यायाम करने का मन ना हो तब भी हमें कसरत करना चाहिए, यही हमारी नियमितता है और यही हमें अच्छा फल देती है।
0: देखो फिटनेस में निरंतरता ही वो कुंजी है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, और जैसे तुमने अभी निरंतरता की बात की है ना, और अनुशासित रहने से आप कठिन दिनों में भी अपनी दिनचर्या बनाए रखते हैं जिससे प्रगति बनी रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा, और साथियों अनुशासित होने से जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी स्वास्थ्यवर्धक जो आदतें हैं वो और अच्छी होती हैं। जैसे हम सुबह अगर उठते हैं तो एक नियमित समय में उठें, जल्दी उठें, पौष्टिक भोजन ही करें और अपनी जीवन शैली का

0: सभी चीजों को अगर हम हिस्सा बनाते हैं तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है।
1: बिल्कुल, और देखो नियमित अनुशासन से सहन शक्ति, ताकत और लचीलापन भी बढ़ता है।
0: लगातार व्यायाम करने से तनाव का स्तर कम होता है दोस्तों, और मानसिक रूप से भी हमें बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी आती जाती है, जिससे आप बिना किसी बाहरी दबाव के अपने लक्ष्य की तरफ, फोकस की तरफ लगातार बने रह सकते हैं।
1: तो भाई क्यों ना अब बात की जाए कि अनुशासित जीवन शैली को हम कैसे अपना सकते हैं। तो भाई करना आपको ये है कि शुरुआत जो हो वो आपकी छोटी हो, यानी कि छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें ताकि आप लंबे समय तक उसे अपना सकें।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा तुमने, और फिटनेस के साथ अगर हम अनुशासित रहने का एक ठोस कारण खोजें, जैसे कि हमें रोज सुबह 6 बजे उठना है और हम उसका नियमित पालन करें, तो ये एक अच्छी आदत हमारे व्यवहार में शामिल हो जाएगी।
1: बिल्कुल, और देखो नियमित रूप से व्यायाम करने वाले अधिकांश लोग सुबह के समय को ही प्राथमिकता देते हैं, तो भाई सुबह तो फिर जल्दी उठना लाजमी है ना।
0: और सबसे जरूरी है दोस्तों कि अपनी फिटनेस यात्रा के परिणामों पर, यानी कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, इस पर हम नजर रखें और अपने अनुशासन को टूटने ना दें।
1: बिल्कुल, और देखो अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से और तेजी से प्राप्त कर सकता है, और ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक ऊर्जावान बनाता है, जिससे आप दैनिक जीवन के कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं।
0: और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि फिटनेस में अनुशासन कोई सजा नहीं है दोस्तों, बल्कि स्वयं के प्रति गहरा प्यार, गहरा सम्मान है अगर हम ये कर पाते हैं तो। और ये वो ऊर्जा है जो हमें ऐसी शक्ति से जोड़ता है जहां हम अपनी फिटनेस यात्रा को, अपनी प्रेरणा को कम ना होने देते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ अपनी जिंदगी में अपनी खुशी के लक्ष्यों को पाते जाते हैं।

0: दास की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी चितचोर।
1: और साथियों, घूमने का शौक तो अमूमन आप सभी को होगा, हमें भी है, और ऐसे में जो वीकेंड्स होता है उसमें लॉन्ग ड्राइव या आसपास की जगहों में घूमना हमारी जो महानगरीय जीवन संस्कृति है उसमें सुकून की सांस लेने जैसा है, क्या कहते हैं आप?
0: बिल्कुल। और देखो, अगर आप दिल्ली या एनसीआर के निवासी हैं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की खूबियों से भी आप वाकिफ होंगे, यदि नहीं तो ये जानकारी हो सकती है आपके बड़े काम की।
1: रफ्तार, तकनीक और प्रकृति को जोड़ने वाला ये मार्ग करीब 213 किलोमीटर लंबा है। इस आधुनिक एक्सप्रेसवे में यात्रा के लिए जहां 6 से 6.5 घंटे का समय लगता था, वो अब मॉडर्न वे की वजह से लगभग आधा ही रह गया है। दोस्तों,
0: 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे देश के सबसे आधुनिक हाईवे में से एक है, जहां हल्की गाड़ियों के लिए अधिकतम गति सीमा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड का आनंद तो है ही, पर लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि रेस ना लगाएं बिल्कुल भी।
1: और हाँ, ये एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे गुजरता है एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क से, इसलिए जब आप यहाँ से गुजरे हैं तो इस फॉरेस्ट जोन में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु धीमी गति और अनुशासन का ध्यान बेहद जरूरी है। दोस्तों,
0: बिल्कुल। और देखिए, सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, मोबाइल से दूरी बनाकर रखें, और अगर आप ये सब ध्यान रखते हैं तो इस ड्राइव में आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी।
1: और ध्यान रहे, ड्राइव स्मार्ट, ड्राइव सेफ, क्योंकि शान की सवारी तभी जब हो वो पूरी तरह से सुरक्षित।

साथियों, ये आखिरी गीत आपके लिए है मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। और इस गीत के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं यहीं घर आंगन कार्यक्रम में। आज सफर बस यहीं तक। मनीषा और दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अथवा आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. ये प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से. श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ, इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी. श्रोताओं, आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में उस फिल्म की जिसने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया बल्कि समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया. वो फिल्म जिसने युवाओं की भटकती जिंदगी, टूटते रिश्ते और पश्चिमी संस्कृति के असर को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाया. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1971 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की. ये फिल्म अपनी संगीत, कहानी, अभिनय और सामाजिक संदेश की वजह से आज भी याद की जाती है. 1970 का जो दशक था उस समय भारत बदल रहा था, दुनिया बदल रही थी और युवाओं के बीच हिप्पी कल्चर तेजी से फैल रहा था. नशा, आजादी और पश्चिमी जीवन शैली का आकर्षण कई युवाओं को अपनी ओर खींच रहा था. तो इसी दौर में अभिनेता, निर्देशक और निर्माता देवानंद एक ऐसी कहानी लेकर आए जो दिलों को छू जाने वाली थी. तो आज इसी फिल्म के बारे में ज्यादा बातें होंगी और सुनवाई जाएंगी इसी फिल्म के गीत. सुन लेते हैं इस फिल्म का सबसे पहला गीत.

0: कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज बात हो रही है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की। श्रोताओं, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी है बहन भाइयों की। प्रशांत और जसबीर मॉन्ट्रियल कनाडा में रहते हैं। माता पिता के तलाक के कारण दोनों अलग हो जाते हैं। प्रशांत माँ के साथ इंडिया चला आता है, जबकि जसबीर पिता के साथ वहीं रह जाती है। इसके बाद पिता द्वारा धोखा दिए जाने पर जो जैनिस है वो घर छोड़ देती है और बन जाती है हिप्पी, और अपना नाम रख लेती है जसबीर से जैनिस। इसके बाद वर्षों बाद पिता के बुलावे पर जब प्रशांत काठमांडू आता है और देखता है कि उसकी बहन नशे की आदी हो चुकी है, तो अपनी पहचान को पूरी तरह भूल चुकी है। बस वहीं से संघर्ष शुरू होता है और प्रशांत जुट जाता है पूरी तरह से अपनी बहन को हिप्पियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए और वापस उसकी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। तो कहानी ऐसी थी कि लोगों के दिलों को छू गई थी, क्योंकि अक्सर जो कहानियां हम फिल्मों में देखा करते थे वो नायक नायिका के बीच में ज्यादा दिखाई देती थी, लेकिन ये जो कहानी थी ये बहन और भाई के प्रेम की थी, तो इसलिए लोगों के मन में इसके लिए, इस फिल्म के लिए एक अलग ही बात थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में देवानंद, जीनत अमान, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, अचला सचदेवा थी, और सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई इस फिल्म में वो हुई जीनत अमान की। उनका बोल्ड अंदाज, अलग स्टाइल, स्क्रीन प्रेजेंस उस समय के लिए बिल्कुल नया था, और कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए कई अभिनेत्रियों से संपर्क किया गया था इस रोल के लिए, लेकिन बहुत सारे, क्योंकि ये जो रोल था ये थोड़ा सा उस समय के देखते हुए बोल्ड किरदार था, तो हर अभिनेत्री इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। इवन दो बताया तो ये भी जाता है कि मुमताज को पहले यही रोल ऑफर हुआ था, लेकिन सबने मना कर दिया था, और फिर कास्ट किया गया, जीनत अमान का ऑडिशन लिया गया, और जीनत अमान को इस रोल में बेहतरीन जो किरदार उन्होंने करके दिखाया है वो आज तक याद किया जाता है।

0: कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ

इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की। जब इस फिल्म में जीनत अमान को कास्ट किया गया था, उससे पहले वो मॉडलिंग कर रही थी और मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी जीत चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनका करियर आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन्होंने इंडिया छोड़ने का मन बना लिया था। और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने बैग वैग पैक कर लिए थे उसी दौरान जब ये मूवी की

इसी दौरान जब ये मूवी की बनने की बात आई तो उनको ऑडिशन किया गया और ऑडिशन में वो सिलेक्ट भी हो गई। लेकिन वो बताती हैं कि उस दौर में जो फिल्में हैं वो दो दो तीन तीन साल तक बनती थी, उनकी एडिटिंग इतना लंबा समय लेती थी। तो फिर जब काम नहीं मिल रहा था तो फिर दोबारा से उन्होंने जाने का सोचा। तब कहते हैं देव साहब से उन्होंने बात की और इस फिल्म की एडिटिंग को जल्दी से करवाया और जब ये फिल्म लोगों के सामने आई तो रातों रात जीनत अमान को सुपरस्टार बना दिया और नजर में आ गई थी। क्योंकि ये जो जीनत अमान का जो उस वक्त का जो देख जिस तरह की वो दिखती थी बाकी सब हीरोइनों से काफी अलग दिखाई देती थी, उनका स्टाइल जो था वो बिल्कुल अलग था, इसलिए उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने दर्शकों के दिल में एक अलग सी जगह बना ली। श्रोताओं, बात की जाए इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तो भारत के अलावा नेपाल में भी इसकी शूटिंग की गई है, वहां की खूबसूरत वादियां दिखाई गई हैं और बहुत ही हिप्पी जो कल्चर इस फिल्म में दिखाया गया है बहुत ही वास्तविक दिखाया गया है। उस दौर में विदेशों में शूटिंग करना एक बहुत बड़ा कल्चर था, बहुत बड़ी बात होती थी और खासतौर से देवानंद की फिल्मों में तो ऐसा जरूर होता था कि वो अपने फिल्म का कुछ हिस्सा देश के बाहर जरूर करते थे। काठमांडू की गलियां मंदिर खुले माहौल में इस फिल्म को एक अलग ही पहचान दी। और अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। दोस्तों, फिल्म का जो म्यूजिक दिया वो दिया था महान संगीतकार आर डी बर्मन ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के गाने आज भी सदाबहार है और सबसे बड़ा सुपरहिट गाना जो है वो अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। और यही गाना इस फिल्म की पहचान भी बना।

0: कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, तो आइए उनकी भी संदेश हम यहाँ शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहला संदेश हमारे पास आया कविता गौड़ और दिग्दर्शन का, मेरठ कैंट से लिखते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म पर केंद्रित आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, शानदार उत्तम प्रस्तुतिकरण और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी धन्यवाद कि आपने अपनी इतना अच्छा मेल हमें भेजा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा जुड़ रहे हैं, लिखते हैं एक फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण की कहानी गीत सुन रहे हैं, गजब कहानी गजब संगीत और लाजवाब गीत। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार और लिखते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा जिसे देवानंद ने निर्देशित किया और नशाखोरी खिलाफ इस फिल्म में दिखाया गया है, जिसमें अभिनय किया था देवानंद, जीनत अमान, मुमताज और प्रेम चोपड़ा ने, आनंद बख्शी के लिखी हुई गीतों ने और संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने, उन गीतों को आवाज दी आशा भोसले, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, उषा उत्थुप ने और इस फिल्म के बारे में जो बातें बताई हैं आपने ये बहुत ही रोचक लग रही हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जुड़ रहे हैं शांति नगर सोनीपत से और लिखते हैं वी आर लिसनिंग प्रोग्राम और एक्सलेंट प्रेजेंटेशन स्टोरी ऑल टाइम हिट्स। जी हाँ बिल्कुल, इस फिल्म के गाने ऑल टाइम हिट्स ही हैं जो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। अगला संदेश हमारे पास देवशंकर तमूरिया, जय देव तमूरिया, तुषार देव तमूरिया, डॉली बेबी, पूजा, आराधिका, प्रभा, मास्टर अल कबीर, किकरी मेटा, बेलहारी, पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा भी जुड़ रहे हैं, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा जुड़ रहे हैं, दतरंगी से, पिपारिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता और समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक, अंकु राघव, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जुड़ रहे हैं, लिखते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और जो जानकारी आप दे रही हैं बहुत ही बढ़िया है, फिल्म के गीत भी बहुत ही अच्छे हैं। खुशनुमा प्रस्तुति, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से जुड़ रहे हैं और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जुड़ रहे हैं, वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक जुड़ रहे हैं, नलेश्वर नगर नरवेल से पी एस नुहारकर, निर्मला और विशाल जी जुड़ रहे हैं, अजीत भवसार भी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जुड़ रहे हैं और लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का संदेश रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से और वीरमगांव गुजरात से अजीत भवसार, प्रमिला भवसार। तो ये हमारे श्रोताओं के संदेश, तो आपके इतने प्यारे प्यारे संदेशों के नाम एक और गीत इस फिल्म से।
1: इस्तेमाल करो हाथ पाओ, माउंट एवरेस्ट पे जाओ, मून पे जाओ, जहां पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, अफीम चरस गांजा के बीच गुनगुनाने से कुछ नहीं होगा।
2: अगर यही भक्ति है, यही भगवान है, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण जिसका जप जपते रहते हो, तो उतार के फेंक दो इन मालाओं को, बहा दो इन फूलों को बागमती नदी की धारा में, वहां ज्यादा शोभा देगी।

0: क्यूआर कोड स्कैन करूं, 5,000 का कैश पाओ, वाह दिन बन गया।
1: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है,
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता, इस फिल्म की खास बात यह है कि ये जो फिल्म है इसे हिप्पी संस्कृति को जब देवानंद ने पढ़ा था तो उनके मन में ये विश्वास आया था कि इस पर भी एक फिल्म बननी चाहिए, लोगों के बीच जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त पर नशाखोरी तेजी से बढ़ रही थी। इसको दूर करने के लिए उन्होंने इस फिल्म का निर्माण करने का सोचा। आर डी बर्मन ने वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक का एक अनोखा मिश्रण इस फिल्म में किया। इस फिल्म के लिए जीनत अमान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और जो उनका लुक और स्टाइल था वो युवाओं के बीच में फैशन ट्रेंड बन गया था। श्रोताओं, इस फिल्म का संदेश सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था, इसने समाज को सोचने पर मजबूर किया। हालांकि इस फिल्म को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन गानों को लेकर या फिर इसमें जो जिस तरह की कल्चर दिखाया गया है उसको लेकर, लेकिन इस फिल्म का संदेश जो था वो एकदम साफ था कि जो परिवार टूटते हैं, गलत संगत जो युवाओं की हो जाती है, उसको दोबारा से जिंदगी में किस तरह से शामिल किया जाए, इसी संदेश को लेकर 1971 में यह फिल्म आई थी और लोगों के मन पे छा गई थी। तो श्रोताओं, ये फिल्म एक फिल्म नहीं बल्कि अपने दौर का एक आईना थी। इस फिल्म ने संगीत दिया, संदेश दिया और हिंदी सिनेमा को एक नई सुपरस्टार दी, जीनत अमान। तो इसी के साथ हमारा आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें मेल करके जरूर बता सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिमी बंगाल के नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुक ली है। तमिलनाडु में टीवी के मुखी सी जोसफ बेजे की अगवाई हेठ सरकार के गठन लैके अनिश्चितता बनी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन समुद्री फौज के अगले मुखी होंगे। खाड़ी इलाके में ईरान से अमरीका विचकार तनाव बढ़ गया है। आईपीएल क्रिकेट में अज जयपुर में 7:30 राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड विखे एक समारोह में पश्चिमी बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के नाल पांच मंत्रियों ने भी सहुं चुकी। राज्यपाल RN रवि ने मंत्रियों को अहुदे से भेद गुप्त रखने की सहुं चुकाई। श्री अधिकारी तो अलावा सहुं चुकने वाले पांच मंत्री ने दिलीप घोष, अग्निमित्र पॉल, अशोक कीर्तनिया, निश्चित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू। इस मौके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाल नाल कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद सन। पहला प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने तो पहले एक रोड शो किया। उधर तमिलनाडु में टीवी के मुखी सी जोसफ विजे की अगवाई हेठ सरकार के गठन लैके अनिश्चितता जारी है। नवा मोड़ उदों आया जदों IUML ने टीवी के सरकार बनाने समर्थन देने की खबरों रद्द किया। CPIM के राष्ट्रीय जनरल सकत्र बेबी ने कहा कि यह राज्यपाल का फर्ज है कि वह सब तो वड्डी पार्टी सरकार बनाने सत्ता दे। चेन्नई में मीडिया नाल गलबात करते उन्होंने राज्यपाल से दिल्ली तो आने वाले आदेशों से निर्भर रहिंदिया देरी दी चालां की वरतों करन दा इल्जाम लाया है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS होंगे। वह जनरल अनिल चौहान की थां लैणगे जिन्हां का कार्यकाल 30 मई खत्म हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अहुदा संभालने की तरीक तो फौजी मामलों के विभाग के सकत्र वजों भी सेवा निभाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी भारतीय फौज के एक बहुत ही तजर्बेकार से प्रतिष्ठित अधिकारी ने। इस समय वह सितंबर 2025 तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सकत्रेत में मिलिट्री एडवाइजर वजों सेवा निभा रहे ने। इस तो पहला वह उप सेना मुखी और केंद्रीय कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके ने। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन समुद्री फौज का मुखी नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस समय पश्चिमी जल सेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वजों सेवा निभा रहे ने। उन्होंने भारतीय समुद्री फौज में लगभग 4 दहाके की शानदार सेवा का अनुभव है। वह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की थां लैणगे जो 31 मई सेवा मुक्त हो रहे ने। अज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। इस मौके विश्व पद्धर से सभ्याचारक प्रोग्राम कराए जा रहे ने। पश्चिमी बंगाल में शांति निकेतन, विश्व भारती यूनीवर्सिटी ते बंगलादेश विशेष तौर पर समारोह हो रहे ने। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते गृहमंत्री अमित शाह ने पोशीचे बैशाख मौके ते गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नूं श्रद्धांजलि भेंट की है। यह खबर आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR जलंधर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ते अटल पेंशन योजना ने 11 साल पूरे कर ले ने। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन समाजिक सुरक्षा योजनावां दा उद्देश्य सारियां नूं खास करके समाज के कमजोर ते हाशियागत वर्गां नूं किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तहत 27 करोड़ तो वध, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तहत 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना तहत 9 करोड़ ना दर्ज किए गए ने। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि जीवन ज्योति बीमा योजना तहत 10,70,000 तो वध परिवारां दे 21,500 करोड़ तो वध दे दावयां दा निपटारा किया गया है। उन्होंने अगे कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तहत 1,84,00,000 तो वध परिवारां दे लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावे निपटाए गए ने। आकाशवाणी की स्थापना के 90

0: बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी वज़रा के साथ हलफ लिया। तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सियासी तातुर बरकरार है। टीवी के पार्टी को अक्सरियत मिलना बाकी है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बआसानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने बाहमी ताउन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम से मुलाकात की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अब खबरें तफसील से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुविंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके साथ 5 दूसरे काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इन वजीरों के नाम हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तानिया, निशित प्रमाणिक और सुधीराम टूडू।
1: आमी सुविंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
0: ওয়াজির আজম মোদি, ওয়াজির দাখলা অমিত শাহ, ওয়াজির দিফা রাজনাথ সিং, কই মরকজি ওয়াজিরোঁ ও বিজেপি কি সরকার ওয়ালি রিয়াসতোঁ কে ওয়াজরায়ে আলাঁনে হলফ বরদারি কি তকরীব মে শিরকত কি। ব্রিগেড গ্রাউন্ড পৌঁছনে সে পহলে ওয়াজির আজমনে এক রোড শো ভি কিয়া। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के लिए दरकार अक्सरियत की हिमायत में कमी की वजह से नई सरकार बनाने में ताखिर हो रही है। सीपीआईएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी बेबी ने कहा है कि ये गवर्नर का फर्ज है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मदऊ करे। चेन्नई में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गवर्नर पर इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली के इशारों पर ताखिर के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी अमल में ताखिर करके बीजेपी रियासत में एआईएडीएमके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान एएमएमके सरबराह टीटीवी धीनाकरन ने मांग की है कि उनकी पार्टी के एमएलए की तरफ से हिमायत का फर्जी खत टीवीके को दिए जाने के मामले पर गवर्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ एआईएडीएमके के अरकान असेंबली पुदुचेरी से चेन्नई पहुंच गए हैं, जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी ई पलानीसामी से गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दिन में लगभग 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने की तकरीब में शामिल होंगे और आर्ट ऑफ लिविंग बैन अक्वामी मरकज में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 3 बजे हैदराबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे, जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रुपए बताई जाती है। सोमनाथ मंदिर की असर नौ तामीर के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 मनाया जा रहा है। इस 5 रोजा तकरीब के दौरान मंदिर की तारीखी अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए वजीर आजम मोदी पीर को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी एनएलएसए आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए एनएलएसए के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और आवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालहत के काबिल फौजदारी मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाजात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर तनाजात निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2023 और 2025 के दरमियान 12 कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया गया, जिसमें 26 करोड़ मामलात का निपटारा किया गया।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के दरमियान रिवायती रिश्तों की तारीफ की। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने खारजी मामलात

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कशफिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

0: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुड़ेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की

0: 76वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की।

0: उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में सम्पन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

माशाल्लाह स्तुतगाय ताला फ्रोत गोना आकाशवाणी कारगिल कना बस्ती प्रोग्राम रखसका दिवक को एक थमा धुन ओमे वक ने सियात ताला फंगे चनकम तंगुम खुरत हंजा देमन पुंगाला इजिन छ दिवस या जुगार छपना तरन छ गाउ ऐशो

की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

मीडियम में 1073 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, कुछ ही लम्हों में खबरें नशर होंगी।

आकाशवाणी है। अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी उजरा के साथ हलफ लिया। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को परेज मैकेना का आज से भारत का दौरा शुरू हो रहा है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बाहमी ताउन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबेगो की वजीर आजम से मुलाकात की और भारत की खवातीन की फुटबॉल टीम ने 17 साल तक की उम्र की AFC खवातीन एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले

तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके साथ पांच दूसरे काबिनी वजीरों ने भी हलफ लिया। इन वजीरों के नाम हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और सुधीराम टूडू। वजीराजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कई मरकजी वजीरों और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला ने हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले वजीर आजम ने एक रोड शो भी किया। नागालैंड के वजीर आला नीफी रायो ने शुभेंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने पर मुबारकबाद दी है। जनाब रियो ने उनके और उनकी वजारती काउंसिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा है कि वो कामयाबी के साथ अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दिन में लगभग 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने की तकरीब में शामिल होंगे और आर्ट ऑफ लिविंग बैन अल्कवामी मरकज में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 3 बजे हैदराबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे, जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रुपए बताई जाती है। सोमनाथ मंदिर की असर नौ तामीर के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 मनाया जा रहा है। इस 5 रोजा तकरीब के दौरान मंदिर की तारीखी अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अपने पार्लियामानी हल्के गुना का दौरा करेंगे। वहां अडानी सीमेंट प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे। दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। ग्वालियर चंबल खित्ते में सीमेंट का यह पहला प्लांट होगा। अडानी ग्रुप ने गुना में लगभग 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया था और इसमें से 1,100 करोड़ रुपए के करीब सीमेंट प्लांट लगाने पर सर्व किए जाएंगे। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरेज माकेना आज से इस महीने की 15 तारीख तक भारत का दौरा करेंगे। जनाब माकेना कल नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो तिजारती तकरीबात में भी शिरकत करेंगे, जिनका एहतमाम पीर को भारत के खुराक के दरामदकारों के फोरम और एसओचेम ने किया है। मंगल को वो तिजारत के वजीर पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और ताजिरों की एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम सीआईआई ने किया है। वो सीआईआई की सालाना तिजारती समिट 2026 में भी शिरकत करेंगे। बुध के रोज वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे और इसके बाद वो भारत चिली तिजारती वफ्द के साथ एक मुश्तरका मीटिंग भी करेंगे। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी NLSA आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए NLSA के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और अवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालियत के काबिल मुजरिमाना मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाजात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर तनाजात निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2023 और 2025 के दरमियान 12 कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया गया, जिसमें 26 करोड़ मामलात का निपटारा किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारत और त्रिनिदाद और टोबेगो के दरमियान रिवायती रिश्तों की तारीफ की। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने खारजी मामलात और त्रिनिदाद और टोबेगो के कैरिकॉम मामलात की वजारत में परचम कुशाई के मौके पर खिताब किया। वजीर मौसूफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती रवाबित और तारीखी रिश्तों का जिक्र किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कपड़ों, खेलों और रिवायतों में यकसानियत पाई जाती है। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबेगो की वजीर आजम कमला प्रसाद विशेसर से भी मुलाकात

तलत महमूद ने बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से गजलों का प्रोग्राम आगाज किया। उनकी आवाज की इंफरादियत थी उनकी मखमली आवाज जिसने लोगों को उनका गिरविदा बना दिया।

सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में सामने भी आप सुन रहे थे छोटी बानू, मंगी बाई, अफरोज बानू और नूर मोहम्मद लांगा की गाये राजस्थानी लोकगीत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के आज के प्रोग्राम में लीजिए पहले समाज फरमाइए लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में दाग फिल्म का नगमा। नगमा निगार साहिल लुधियानी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सिंह नारायण और साथियों का आप सुन रहे थे मेहमानिकार थे आनंद वर्षी मौसकार यतिन ललित फिल्म से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और समझ लीजिए सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में देव कोहली का लिखाई गई जिसे मौसिकी सजाए राम लक्ष्मण ने फिल्म है मैंने प्यार किया।

आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में द फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी से गाया था राजेश रोशन ने। और सामिन जी, अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में एस डी बर्मन की मौसीकी से जाए नगमा फिल्म है इश्क पर जोर।

बहू हूँ, इशारों को अगर सम

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम हूं कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

सिलसिला फिल्म के अगर आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाजों में, मेहरबानी गाते थे जावेद अख्तर, मौसीकार शिव हरी। और आज के प्रोग्राम की आखिर पेशकश सूरज और चांद फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में।

जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई और अटल पेंशन योजना एपीवाई को पूरे मुल्क के शहरियों की खिदमत में 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। खजाने की वजारत ने बताया है कि सभी शहरियों खासतौर से समाज के कमजोर तबकों को इकतसादी सहूलत देने के लिए इन स्कीमों का आगाज किया गया था। इन स्कीमों के बारे में बात करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी जन सुरक्षा स्कीमों का आगाज किया था ताकि कम कीमत पर इंश्योरेंस और पेंशन के फायदे हासिल किए जा सके। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल की तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमत है। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ अहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल, स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफी तजर्बा है। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि अहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के 165वें यौम पैदाइश पर आज पोचिश बोईशाख के मौके पर रविन्द्र जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और खास प्रोग्राम शांति निकेतन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी समेत पूरे मगरबी बंगाल और बांग्लादेश में मुनाकिद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में रविन्द्र संगीत, शायरी, रक्स और ड्रामे का इनेकाद किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पोचिश बोईशाख के मौके पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को खराज अकीदत पेश किया। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरेज माकेना आज से इस महीने की 15 तारीख तक भारत का दौरा करेंगे। जनाब माकेना कल नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो तजारती तकरीबात में भी शिरकत करेंगे जिनका एहतमाम पीर को भारत के खुराक के दरामदकारों के फोरम और एसोचैम ने किया है। मंगल को वो तिजारत के वजीर पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और ताजिरों की एक तकरीब में शिरकत करेंगे जिसका एहतमाम सीआईआई ने किया है। वो सीआईआई की सालाना तिजारत समिट 2026 में भी शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कानूनी खिदमत की कौमी अथॉरिटी नालसा आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए एनएएलएसए के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और अवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालियत के काबिल मुजरिमाना मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाजात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर तनाजात निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2023 और 25 के दरमियान 12 कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया गया जिसमें 26 करोड़ मामलात का निपटारा किया गया है। शुमाली श्रीलंका में कनके संथुराई और भारत में नागापट्टिनम के दरमियान चलने वाली एक मुसाफिर कश्ती को जुमे की रात को समंदर में कई घंटों तक रुकना पड़ा क्योंकि उसके इंजन में खराबी आ गई थी। इस कश्ती में 144 मुसाफिर सवार थे और नागापट्टिनम के साहिल से तकरीबन दो बहरी मील दूर कालार के पास इसके इंजन में खराबी आ गई। खबर मिली है कि अमेरिका की जनूबी कमान ने मशरक बहरुल काहिल में मुनशियात के धंधे में मुबैना तौर पर मुलव्वी से कश्ती पर हमला करके उसे डुबो दिया। इस वाकये में 2 अफराद मारे गए और एक जिंदा बच गया। एक मीडिया पोस्ट में अमरीकी जनूबी कमान ने यह भी बताया है कि इस कश्ती के जरिए मुनशियात का धंधा करने में दहशतगर्द तंजीमें मुलव्वस हैं। खबरों में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान अमरीका के फौजी अमले को भी नुकसान पहुंचा है। आबनाए हुरमुज के करीब कल एक लकड़ी की छोटी कश्ती में आग लगने की वजह से एक भारतीय बाशिंदा हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि करीब से

0: ne kana chok samna ko to exercise mane bilkul khap chaz ne sabse important in kasa
1: kasani di ngates exercise bit exercise si time po ngata number gushin gasu exercise ri ngata bar gushin de school chi zerna
0: exercise sabse easy aur sabse effective exercise walking in na dulcha mo to dulna fito ko dulna 15 minute kam se kam dulcha ra या हफ्ते आने टाइम मांगना का तो आधा घंटा हर दिन के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन रहना आधा घंटा वॉक बचा ब्रिस्क वॉक मतलब जल्दी जल्दी डुलचा बंगा अमितांचा माना कुलिया में डुलचा ब्रिस्क वॉक जैसे आती है तेज डुलचा मतलब उतना चलना चाहिए आपको कि थकने टाइम तक जिससे आपको हार्ट बीट तेज सचने ना यार यारी हार्ट बीट को यहाँ पता है पसीना मत सोख छना फिर आपने अच्छा एक्सरसाइज पसीन छना आती दो गचुका है टाइमिंग को यार मोहतुक बना फिर तो बना अब एक कंसेप्ट है अलग अलग कंसेप्ट एक कंसेप्ट जो मोहतुक सुबह 7 कह रहा हूँ मोहतुक 7 बजे कह रहा हूँ अगर आपने वॉक किया एक्सरसाइज किया तो वो ज़्यादा फैट बर्निंग में यार सिल को जू चुके ज़्यादा इफेक्टिव रूप से लेकिन दूसरा कंसेप्ट एक है कि आप दोपहर में करोगे 4 से 6 के बारे में वो आपकी बॉडी को ज़्यादा थोड़ा एथलेटिसिज्म मेरा पावर देता है क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में खोपा जान पो दोस्त बस यारी मसल वाला पावर होचिन और मसल एथलेटिक यार मतलब फंक्शनलिटी वाला डुलचिन जरे छना यारी चॉइस इन आप सुबह भी कर सकते हो शाम को भी कर सकते हो अगर ज़्यादा अगर वेट लॉस करने के लिए करना है तो सुबह करना बेहतर रहेगा या आपको ज़्यादा फिटनेस के लिए जैसे आपको एथलेटिसिज्म बनना है जैसे जवान बच्चों के लिए उनको दोपहर में अराउंड 4 to 6 ज़्यादा वाला डुलचिन तना वॉक पूछी बच्चा ब्रिस्क वॉकिंग तो मैंने बोला ब्रिस्क वॉकिंग मैंने तेज तेज डुलचा माना बामा मितांचा माना कुलिया में डुलचा चढ़ाई और उतराई में चलना नहीं है प्लेन पे चलना है क्योंकि खासकर माती में छिमिलना चढ़ाई उतराई में अगर चलेंगे तो पुक्स में कहना पुक्स ना पुक्स में जरूर मोचिन खेमो पुक्स में का लोड छाना का तो पुक्स में जोड़ सागा दो सागा माती जोड़ सा जरूर मोचना प्लेन ही का डुलचा ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे 15 मिनट्स और अल्टरनेट डे 30 मिनट्स
1: कसा दूसरों का तां एक्सरसाइज़ करला जिसे कहते हैं दैनिक यंबो दिरिंगेर देलुक्सी प्रोग्राम पो थमातों अर्द्यांमा यो दिन तां अर्द्यांमा सूरी दुक्तो इंशाल्लाह नत में दूसना योग में भी प्रोग्राम पे यं तां आयं तुगे देमन पो गचंग सागा इज़िन चेक देबोस ये जो खुदा नर सहमानी फागरे
2: संस्कार
3: या यु ना सरेंग तशी यु चन यु ना संस्कार तुंगरी निन ना ना मिचे ओ जेंके गोमे ने आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ना ला जॉइंट डायरेक्टर पोस्ट कंडक्ट से तसंगा रिटायर सों से लॉजिक सों से जो तिनी संस्कार कर्षा गुनपा संस्कार गुनपा सख पिसंग गुनपा छे शोक्स पिन संस्कार गुनपा छे तल गुनपा यत यंग चन ते नंगनी ये दे नंगनी चेशो पो कर्शांग गुन पाई कर्शांग गुन पा सना नाउ सेना ते ने जंस्कारे लामा मा कस्पाजी चांसे मिशरप जंपो जुकन जी योत क्या कौन चार तब से इनो की गुन पा ले ड्रीन सं लो स्टोंग ची तंगी बियंग अन ला गुन पा चार सिन गुन पे नंग ला दसा लामा दुन्चु ये चु जी जुक से अंचन गुन पे नंग लामा अन में एंटिक्विटी से रिक्स तंग चलक निंग पे रिक्स तंग गुनपे नार्टेन निंगपा मामंग पुयोंचेन तेने ते गुनपे छगरप जुना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मा छनमो योंचेन एका अर्तो अशकोस्केन दा तेने शुवे का डिस्केन दा तेना चोला गुनपे नंगला ता मचे नंगपे बुद्धिस छोसे नंगजेन ला मा यसपा नंगपे गुनपा छेशोक्षी इन तक्सा संस्कार नमा गुनपा संगमे पसंग सख्पे संग गुनपा छे तक्सा इंजु Tini ing gunpa tang drelte yang zanskare mimang mana saket mamang po jindak jindak zene follower zanskare sak pesang gunpa sak pesang tongpa yul mimang mang chebo zanskare karshang gunpe under la yong chanju tini te main be zanskare gunpe karshang gunpe nang la tang tiring tus tang stun pe lobjong yana studies ma yespa yong chen buddhist philosophy skola mamang po yong chen रिचुअल सिस्टम में ना लाऊं तेरे माय जस्ट पाऊं चेन तेरे दांत तेरे मॉडर्न एजुकेशन ना दा स्कूल में गुनपा खोरा इनकम सोर्स गुनपा नी पिंग से तेरे स्कूल में जाले जाले फुल तेरे दांत तेरे मॉडर्न एजुकेशन ना माय जाल बताऊं वजू तू छोन मुला तेरे ते माइन बे यंग वेलफेयर मिमांग तुन तक ले चीज गुनपे ना सोर्स इनकम डोनेशन चीज यो ना तो मिमांग फी माने गुनपा खोरा यार गेस चोचे दां चीक पब्लिक लम फंतोक से पिया मा गुनपा मा यसपा ट्रबाउन न मा जाला जुक संचन चीजिक पेने जिलेब ना मिचिक पो रंग चंदे न मचा रंग चिक पे यूज मचा ल मिमांग तोन ता गुनपा यार्गेस तोन

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल R.N. रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव M.A. बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक

0: दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. The newly elected MLAs of the West Bengal Legislative Assembly will take oath on the 13th of May. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and other leaders of the Bharatiya Janata Party were present at the swearing-in ceremony. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking the oath as the Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK has claimed that it has secured support of 120 MLAs to form a new government in the state. Tamilaga Vetri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, required the majority mark of 118 in the 234-member house to form a new government. The party said both the VCK and the IUML have extended unconditional support to it for government formation. Vijay, who won from 2 assembly constituencies, will have to vacate 1 seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with 5 MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with 2 MLAs each, stands at 13. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh said the successful flight test will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat perceptions. The Enforcement Directorate, ED, has arrested Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in connection with an alleged money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. Earlier, the ED had conducted operations at 5 locations in Delhi, Gurugram and Chandigarh in connection with the case. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka.

0: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक पर, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: रंगी बिजनेस उल्लास के तंगमिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोलन लोकल इन या फायुली थोकाइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब पिल्ले पीस कप्स मांगमो धरने अंतिस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांगयन चाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर
4: 8700001 4242। सुनो ना।
3: हाँ।
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001 4242।
4: ओ 8700001 4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001।

0: अजो छाना नियर से हाँ सोन पुगा कने खुमात या तो नला लूट का चुक चुपा से हाँ लोकल लूट खुमात सो या एग्रीकल्चर कने लेन में तगा तो शी का
1: लूट ना अचास हलिकल्चर कने मिलेन ना दिया लून ना अचास न्यो से खुमात नाती नाती लोकल लूट लूट न्यो से खुमात या नाती दिया ना अमी ना दिया ना नां क्यों चा आर देर ना अच्छा नमो निकना न्यो से क्यों चा दून क्यों से ताचा सोन ना अचास आर बाहर नां क्यों मात हलिकल्चर पनी संतां मारिया हेलीकल्चर डिपार्टमेंट इंसान अच्छा ताम आते हेलो सेलु गुरु पेस जरे कोई इंसान ये दक्षिण नगा जगह चाहे कोई इंसान हेलो सेलु गुरु पेस जरे हो चुका पेस हो दिया सब्जी कहाँ फंक किया दुक पाजू दुक तोलना ताम नुकसान चिमिनु या फंक किया दुक अच्छे नमों गांग मागा अच्छे नमे इन नसां कोशिश बान कतना कश्पार बसे कौन कोशिश बान कतना मिले पशे मिनु पाजू यांग ताम गा इन नांग तेज या युद्ध न भार कोशा दुक या यामाल ची मेहनत ची भार कोशा दुक पाया अच्छे नमों ने मेहनत बान कतना मिचा चेक मिनु पाजू यांग तेज ची तब नांग चेन दुक या दक्षिण ना मिंडी तब नांग तेज छाजिनु यांगा तिरे बिंदी आ बिंदु जुया शिमला मिर्ची आ बिंदु जुया यांगारे शिमला मिर्ची तब से क्यों संगारे चौंस इन जुया कोस्तों रिया चेनु या शपिल द चामिंदु क्वालुत बना रो क्यों रोस बिनु क्वालुत बु क्यों ता मन कोस काम से चेनु गियर माइन नं क्वालुत बु क्यों ता मन स काम से चेनु दोनी कंगा चास आज मुदा बस इन जु आज मुदा लेनी निया या बिंगान आल या शिमला मिर्ची उन ला लुत बु कामरी कामरी रोस नु या क्वा सा होल मोर रोस नु या मगर सा छक्सिक जमोरी शर्मा चंद मेट पादु तक्षर को सुनो या दून सारे का कर्पार में से मेहनत चिबाना ना अति बस पूरा हाथ चेनु जो है यंग न्यू अर्गो शामिल दुगिया अर्गो नहीं मिलना अते लुस्कान ची ये दो अते नुकसान मावा दूर तुप सिंगी माता ना अता अति अर्गो नहीं बस पांडे ओनी कने भी नहीं जो है भी मना अता टेम टेनो जाया मसों दे हम अता चन्ने अन पेने अ मसों हम अता बाजार ना न्यू अर्गो अर्गो पना अता आराम बस दिया प्रूची प्रूनिगा प्रूनी जिंदगी क्यों ना दे देने अनु अते सक्या चिंग योग सामना दे देना चानु अता dombe gakshaduk paju yang ata kashpar chiba se dio tsorle menna chiba se yang ate le tem za ya ma ba yot kani saman pu za ya ma ba jarna katona ngata ga sabzi glus na chi lus na za ya chaminu paju yar guni filang ata faida du ya zviar filang faida du ju yang ata khachi ga du tsik sabzi nyar go se yang acha khoda shukur ba ser gun zviar sabzi nyu aman mir go spachi ya ये सब्जी उनको रंग बोते ना तां आराम बसे रहे स्कूल भी सब्जी उबोते रहे और जैन रहे पु आराम बसे बोते ना चा मियों चा जुलो कोरे आराम बसे प्रूबस बीस ना तां सा मैं ना जी बना ना कोशिश बना तां गंग माँ है चचां जुया
0: कैसा ये रगा का चुनमान दक्षा तब सियोत नहीं दो निकना आई गतुआ ये रिस चमचर फायदे लेने जबारी चमचर ये रायों दुक
1: Zabari ngata zo se tun se yon nuk junga cha ngati dia denari kankurik luse nuk pata.
0: Kasa.
1: Ngati dia kame rinchik kanglari luse nuk paya ma sabzik tap se kheruk zirna. Ka lashi ya. Man ta na dupo batsina tulchi to se kherna fayda duk ya. Sabzik tap se kherna fayda duk ya. Tam nyale miduk cha ya. Nyani man pudan dirin zamane anu nyale man miduk cha. Gar koshishi bacha ya ngata. Pshu ninna bomo ninna saak chizirna. Yambo atapui la sponsor juri duk jiri. Kule kule anangata yang atapui dia sakyat pika mine ngata. Chang denim chacha minuk. Tu chacha minuk yang ngata sakyat yanu na mine ngata. Faidek minuk paju ngati sakyat yanu har peda duk juya. Kuro tabna kuru peda duk. Nas tabna nasi peda duk. Sabzi tabna sabzi peda duk. Shtuek tabna se peda duk. Norbalan mi jang ngata mehnat tonu zirnan du majak na du majak pa. Ngata aram duk paju ya. Iya norbalan chi mi jak duk samna. Sabzi wabzik tabna arguni mina alu tabse jak na. Mulak citab sejarna, aram basing ata don mora jaga cianjarna, dan dirina don moyin, gramik garion, gram momit, gang sejiks momit. Kering ata don mora nang cianpang sejarna, aram basing lusi cuy yang acas stone la don saktab se ashi basejar, spil lang acas dion sen cuy. Iya, orju, alu tsorca, mulak tsorca, gobi inna gang ma ngatir binduk don jaga cuy, tsong jaga cuy, daksan nang ngatir, mana ngatir gaun yang tsong cedia, mengyo argos pamit, iya daksan a gaun yang nang acas nyose kyong dia, nyose kyong sebaragam tsorsun. Nangati ar lon chetales ku sorsun nang cha song nyos ki on sergoni mingna jak pa ju ya daksan la beselus pan sartsin nga cha kam ridule dia tu na met nang ata o ju nga cha aram bas nga chi de na cha ju ya rozgar nga cha de ka aram cha ju phu bas bi sin aram bas nga cha de on dul ba ju ya
0: chana spochas lente ga tsuxi bas ente sa agar ka to spona ka to kosteri ka ga tsuxi bas spuat
1: من انگاته سپون سپون کاتونا سنال لپوش کوچه جویا خالچا جرشی گلودی تابسه پوش کوسه خاله نجارچا یه دی از کیت سپول انگاته سکولیا سپوچا سپوسن لود پوت سنال تانسه نش کوسه جرنیز پانسه جارچا دو دین پانسه جارچا دیگنا انگاته سپوچو سپوچا سپوسن دو سا خاله نگده دن سپوچو سپوسن انگاته چو تانچا جویا چو جرم

0: 500 रुपया किलो आयो ओरिजिन 75 रुपया दारे किलो छ या ओमाओ चामचिक मेंगा सोंदारे दे सापिका ngati ओलुन खाछिन ओलुन लता चाओ दे लासपांदु या ता देखने उ ngati ngati फिया जिनी लासुन जिंग बात बचान मन जरूरी आलू तंगना आलू दारे चाम किलो किलो चाम सोंस नाला 10 रुपया 8 रुपया किलो पिन दारे 50 60 रुपया आलू किलो सों या 100 रुपया किलो छत ngati गुनला या छनमा दारे ngata किलो 60 70 रुपया छनमा छ ज्ञा चोला दुख पबा संग कम से कम ग्रुप चिचो न संग मेन का तो रंग सेकमात बा रंग अछल मोन सों से जिंग चिताप से देखन सनमा फिंग नंग ज्ञा चुगा लखलाज मेत पा या गति लाज मेत पा नंग आ दुख से टीवी अल टेन मोबाइल लाल टेन दुख पिंग आ तंगा दारे टेम मेत नमजा मेत नमजा में गा सों सिन लेक से न तो मेत में गा सों सिन स्नाल लाजर न का तो चिंगम मान चम यो चुक मुल चिंगम छे यो चुक देखन चार यो चुक दारे एक यो दे सपो नमजाओ सक्ति मेंगा छे नो सिन दे फ्यांग आ दुख पिते मान गति लगा यो मेत छल लंगित मतंगलास बचा निमा रंग खोकपान स्पेशल रंग दान खर्ची वर्ची ठीक ठाक जो से रंग लासपो ठीक ठाक बसे बचा या सखत इन का तुंगा जा सखत बिन दुख जरे जे साग मजे बिन दुख चा साग जर खानो ने सखत लास मा बिन दुख चा लास गमा न्याम बो खोचा जमे
1: बस इरेस नम ना इरेस दि तुख लासन बे प्रलुक्स बजु या ना गतो संबे गों जा या यंग अच मो चु के न थोंगा या या यरी अकलिका यरी संबे का दि तुस ला ये दिलेन पयों से इरेस
0: कासा जु ngachi amaz las be chu mane business las ba na ngacha sak pon ngam bu ngam bu sawak zire na ngacha ya la cha sem cha sak ngam bu bat pin ya de ken ngacha amaz zu tola las sun ba na ngacha ngatang samba yong se sawak zire na las ba sin na las ang ba cha snot kru cha gon cha kru cha na rang las ba cha ya ngacha sawak zir khan chok si ba sa maduk pa yot pilas ga ma ngacha amana chok ba sa do tola las ba cha ba se dare business pa amaz ba na de ken ngacha pata son sin dare ngacha yang nok sem cha nang ya embroidery anu ngacha last podulinet
1: ses eres mosde amekena nga lobsin songha darenga ti ama in mangmos ya nipshun la sabar kel jit pukharik ta anduk sabar punanga ta ses punanga ta mana zaruri jo ses punanga kharchan dare namzan embonga ta shil sabar mana kharchanin ma ses pun yambo yambo agar ka tonga tip shu bas bisun pesan bom busan dizol la sakhat na tagrin jagna nga ti nai skolchi kruchi safai ya lahmo basen nang saf jagchashi gosla kruchashi duni nikanang khong mana laglen ma cha चुक पजागना का तो रगेब ना दी प्रून ला चंग मुश्किल आ चुकी है
0: क्या सजू प्रून ला लास नियम पोस आप जा चिमिचुंचे सलाम कलाम बचा चिमिचुंचे सोकपोस पेरा मिजर चा सोकपो मिने अबो प्रून अबो मिडुक चा सोकपो सोसोचे ने अबो मिडुक चा नंग लास जो ना का तो अतामा चाम चिक लाशिक अतामी लाशिक बना मदद चिबाना संग जून गंग मार गया ला इंजरे साब से ओदो चोला छुंचे चना साबाना गतांगा दारे बी लास पोंगा ताफ्यक छिनु पया बचाओ ता दो चोसका तो माछाना का तो ना दारे गतांगा थों ए फ्रुनिस गजुक लास का तो बे सावागा तांगा मुन ला सावागा तांगा जगत बाहर ना बाहर सावागा तांगा ड्रग लेने गाना गारी बुमोन लिका चाम से स्निया दुंग चाम से चीर सोकपोस पेरान सोकपोला सुन थों ए या दोन बसंग कम से कम रंग ना सावाक पोजेरेन लास पोबेन बिजनेस बेन का तो दुखना ngati zindagi ur gyalari chacha du pa jya kasa
1: business bana ngati di sahyat pikana yare sunma get bad base ngal la chas na tempo tan se yare di unika fralux batuk chana di unika nga ta yongge cham yong che yong cha du ju cham ching ati mimans la achinu mo chen na ya nga ta dale ma duk pa unika laglen bana ka to ngati nang cham chik yar gyas la yong cha duk cham ching ata rux chacha du
0: dunya nok mana hesab base mana charcha min ju ngati de sabjin zbiar la zo se thun se achnuma ta se nor balanga ta se rgul la skambo khorang atir gun la choncha chet kam sa kam lag akspat ngata nga 8 mina 6 mina ngata lag akso luspat kam sa kam mulak po khong se gap se jagna to de chut mulak po ya phet khong se shu se nima ta na sang guni de na son dal po na ste cha son ya sabji inang zbiar la zo se thun se man achnuma kra le ta se skam khan pur gun la jam bana sang kam sa kam rangi ngata kilo adare sam chat chantis na langata mana tis mana 15 de mana kilo ri tamat pin dare 100 rupi kilo kilo chana kilo mang mo chin emi on pheda song ngata pheda song de
1: chunma eng ga chi chi chap chunma rik ta beta dare ngati bazar yang nong atia chinu monis mana pramachik chunma thon ping se thon duk de masala shimla mi rizer ba chos khira bas na ngati ri mi chat
0: ngata mana pata mit pin khira chata ngati de shimla mi ri chata या मिर्ची छाता मन उदन संगता चंग पते में पिंसिर मुलाक पनंग आलू ना मुलाक पो गाजर पो गाजर पो दोने या गोभी हो चुक दारे मन हर एक सब्जी क्यों होत मन हर एक मन या यहाँ दिन यानु मन अस्तित्व सांचिक मन योद में पाजुया या फूल गोभी ना कड़म पनंग मूली ना दोन नगतिस ना लेचेन होते दिन निकाना फंके

0: बाखानला या हिसाब बाखानला नौकरी पर बासंग अच्छा खासा गति सखेत पानला पेनी जमा छजू दरे दरे यार तो अच्छा खासा दे नौकरी पानला माने या छे बिंग इंसों से नौकरी बाबासंग कम से कम रंग लास बसे बिजनेस लबो मुसुन बिगजाक से लास बाचुक से या कौन पेनी अच्छा खासा बसे सितवान जिगने चुआर गोस चो से तांग से कतो बान कतो ना अच्छा खासा पेनी जम छजिन
1: दरे माने ला अच्छा नमो खचिगा खवा रोजगार छचा सोंगे हजु
0: माने रोजगार छचा दरे गाते जी के ना टू क्यों से या बाल क्यों से ला ताना का तो ना खुआ आंधी के पेने सों गाता पेने सों खुआ अच्छा खासा बसे ना दुख से खुआ बने ला जाओ
1: मर्सिस
0: ठीक ठाक बसे ला सुन गंग माल उपजे जो चिक चिक न्याल दुख ना मंगार गया नुकसान है
1: मर्सिस
0: चिक चिक का तो गेन ला का तो बिना मंगार गया स्टोंग खुआ
1: पनकेर
0: तो तक बो मोला
1: नोर ये बाले के ना गचुक पनकेर लेने देंतेस दरे नोर जगत मेद
0: माना नोर जगत नोर माना या नंगा माना कम से कम नोर 10 15 साल दरे जगत तायंग लोनी सुम सों से नोर कलेप से
1: मर्सिस
0: स्नाल ला माना नोर गंग मा नोर बालंग गंग मा चों से ना दिका पोरोरि छुथु मा दिका कार युले का गंग मा हॉस्पिटल दरे यंग लोगत कुले कुले आ युले नंग ता युले नो लोगत युले नोर बालंग जक्से या दि बाल पे कना माने दि बाल रेड पुना गा ता चत पंगेन चमिन गा चत इन नंग गा चत या युलु ला सों से बाल क्यों से दो शत पतंग से दारे नदी के या शत खंच मशीन चा हेप से लो दो ना चा ता चिन गा चस मेन न का तो 1500 रुपया खोस गा चा खा लेता
1: मर्सिस
0: नि दारे गा चा 1500 रुपया किलो तंग माने 1500 रुपया गा
1: चा खा ले स्कूट पा के लो 1500 हजो
0: नि दे कना दो खों से या बमुचिया या ला तंग माने 2000 रुपया
1: मर्सिस
0: नि दारे गा चा 3000 रुपया देना बनियान पोजर बना गजा 200 मिनट में या सक्तांग से माने शाचा खुचा दा बाल सक म्यो से क्यों से लास टाइम से शुल का लेवल 3000 छतिन 3000 गति म्यो से बना माने मंगमिक छिन दु छि सों से माने मेंगा से जदे मगर बाली कादर पोचियो बाली ची गता फेदा तंग मत बाली ना ची उ मत बाल पो गोन माने गता ची छाजर खान पो गति खास दि छुनचे तब का यानो पता में बाल पो चीन जर खान पो बाली दे स्ट्रोल पे का गति आपी आपो सा आता मा सा पुष्माजर मोमियों मिस्त्रोल पो केत पाजर मोमियों मिस्त्रोल पो गुआयामा मिचाचाओ दो तो जरूर पिंचुक दारेंगा तेल तेन क्यों स्नाल लचाम तो चियो पिंचुक बाल पाने चाम तो फैदा यों मत पिंचुक बाल गोने चुक हों थुलु गोने चुक सकपा गोने चुक दारे तो दारे बुमोने पूरा छुंचे दारांग मा 10-15 माचा पुष्माजर मोत कामाजर मोत
1: स्नापासी
0: बाल पो दारेंगा तांगा थारे मारे में नंगाती शुल का योचा में स्नाल जन नंग पेंदुक से बान बंबिक तुक संग कोंस खाले तांग ने पिंच पिंचनी सागस नी दारे जस नंबो जाम छे माना 16-17 हजार नंबो छे ने तारे
1: छाने दिया मेहनत मांगमो छा
0: मेहनत मांगमो
1: मेगा और बलांग जक्से दु तोर लरांग मेहनत कुरे लज बना का तो चिकपाना दी पेनियु गती दना युल पेन लूस इंगिस्पाना गता नोर बलांग चांग माना कोई का जाती गता
0: बाल पो गा छिमी छुनचे छुनचे खान फ्रु सा बाल पो फान या दिंग माना पक्ष पे चामचक देना दुख दे थुलु खों से थिंग मना तांग चामचक तसली बस दुख चाहे दुख देमिक सुन दे जुन गंग मिस तेन खों ना जुन लमाना जु जुन लमाना जेरे गा तांग मा छाचिक में लाते दा दे दुनिया नु दे बालंग पोखरी केन चामचक फेदा यों दुख नक्स ने थोचिन या माना नरपन बादुर ने शार को दे बालंग पो फिंचा खों चार चेक तांग चा छिक तांग चा छक तांग चा गातेस गातिका बाहर से सों से न्यू से खों मा बसंग गातेस कमाई बोस गाते जो गाती लादा
1: से नतिका गिला तसली ना मार्ची मेन
0: नका तो गिया दारे समेत गिया नाला माने 200 पिन दारे 600 किलो सो देर मार पे चीडे से सुस्तु सिंदर खान पंगा ताची पाता जो दु गातेस कम से कम बलांग पे कने क्यों से गातेस टो से गातेस क्रोख से गातेस पिन सिंदिया नु माने शूट मार पे इंजर खान पंगा ता पाता
1: नो नो
0: चा माने मेदे बलांग पे कने बलांग पे ओजन पो थाप चरी क्यों से गातेस फुल ला थुंग मा ताना चा ताना सा छुने से से मेदे यांग यांग केमिकल से से मेदर चात दारे दे डाबे ओरिजिन पया 80-90 छिंदुक ngati जो 60-70 छिंदुक ngati ओरिजिन पो काम सों खों दो ज्यादा सों दे छाना दे प्लास्टिक ओरिजिन पो छिमिन लता मना सिंखा जर मों दरन
1: कसा
0: छाना का तो खया देने केमिकल छिने यत पा जरूरी सों दे दे थिया ngaz अछिन मुल्ला चिंग एन एन ngati सख्यात ना ngati नोर बालांग ना ngati बाल पो ngati लासुन ngati लगलासुन बसे ngata यार गेल छों मि फिया ngata गेल लबिंग चुपी फिया मेहरबानी जरसिन बस
1: चिकपाना ngati चांग पेनी खर्चिक मेट पंगति सख्यात पो फांग से मलुस निस्पाना गता नोर बलांग जक्से रंग मलम ना रंग बलांग नोर बलांग च क्यारी क्यों से जक्से दया तो यंग अच्छे नमक तो यंग अच्छे नमक तो खुआ रोजगार से चिंदू ना पेनेरिक तांसे स्टूल बन जाए
0: तो हज़ बियार लेना गुल लेना का हम सब जहाँ जक्से ना पेन जक्ना का तो दरें गता गा मन पता में दे नोर जक्ना का तो टी हुए बलांग जक्ना टी हुए और दो तो

0: मीडियम में बिका दे वो आकाशवाणी करगिलिन
1: रंगी बिजनेस उन लस्के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलेन उन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब लेपी स्कप्स मांगमो दरने अंतिस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242। सुनो ना,
2: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अनंतनाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मनशियात मुखालिफ पदयात्रा का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में नशा मुक्त अभियान के तहत इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाइयां जारी। सरकार नौजवानों की राहत रसानी के लिए वादाबंद, नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी। और सुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार के पहले वजीर आला की हैसियत से लिया हल्फ। अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इससे ताल्लुक से पुलिस कार्रवाईयों पर मुश्तमिल खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले के को मनशियात से पाक करने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि एलजी ने आज अनंतनाग में बॉयज डिग्री कॉलेज से मनशियात मुखालिफ पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें काफी तादाद में तलबा ताजरों और समाज के मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि मनशियात का नासूर समाज को खोखला कर रहा है और इसका कलाकमा करना वक्त की अहम जरूरत है।
1: मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नहीं, ये लड़ाई आपकी, ये लड़ाई मेरी, ये लड़ाई हम सबकी है। यदि हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें शायद हमें माफ नहीं करेंगी। आइए हम अनंतनाग की जमीन से सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अपने गांव, अपने मोहल्ले में किसी भी ड्रग पेडलर को पनपने नहीं देंगे। हम ड्रग के शिकार नौजवानों को रिहेबिलिटेट करने में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे। मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि जब आवाम किसी उद्देश्य के साथ खड़ा होता है तब उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। जब पुलिस का डंडा, प्रशासन का कानून और आवाम की ताकत एक साथ मिलती है तो परिणाम ज्यादा प्रभावकारी होते हैं।
0: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में एक कलमकार और फिल्म साज अली इमरान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
2: मेरा तो सिंपल सा पैगाम है कि मंशियात हमारी जड़ों को खोखला कर देती है। पूरे जम्मू कश्मीर का यूथ इससे खत्म हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए मेरी मौजमाना अपील है सारे यूथ से कि वो ड्रग से दूर रहे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूँ कि वो और इस पे तेजी लाए ताकि ये बिद्दत हमारे जम्मू कश्मीर से पूरी तरह खत्म हो जाए।
0: मनुष्यात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू सूबे के उधमपुर जिले में मजालटा के मकाम पर एक तलाशी कार्रवाई के दौरान बोरी कदल श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन और राजौरी कदल श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद राकिब को नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया। रियासी पुलिस ने अजय सिंह और जमात अली नामी दो ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई। कठवा में मुस्किन नामी मनशियात फरोश को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान डोडा, उधमपुर और दीगर अजला में पुलिस के एहतमाम से मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद हुए। कश्मीर सूबे के अनंतनाग और बड़गाम अजला में पुलिस ने मनशियात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान भंग और खशखाश की काश्त को तबाह किया। अवंतीपोरा पुलिस के एहतमाम से पुलवामा जिले के खरव इलाके में मनशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। सोपोर के श्राकवारा वागुरा इलाके में भी सिविल सोसाइटी के इश्तराक से मनशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। पुलिस ने अनंतनाग

0: कश्मीर के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर और गांधरबल जिले के पंचायत इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद अमीन शाह ने आज श्रीनगर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तरक्याती मामला के अलावा सियाहत और रोजगार के मौकों के मुतालिक उनके साथ तबादला ख्याल किया। पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने इल्जाम आयद किया है कि जिला के लिए अमृत प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत 18 करोड़ रुपए मालियत के मंजूर किए गए पीने के पानी के प्रोजेक्ट को पसपुश डाल दिया गया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए गुजश्ता बरस लागत के रकम की पहली किस्त वागुजार की गई, तहम अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीद पर्रा ने दावा किया है कि डीपीआर को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सौंपे जाने के बावजूद भी इसको प्लान में से निकाल दिया गया है। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से इस मामले की जानिब तवज्जो देने की अपील की है, जो पुलवामा के आवाम के लिए राहत का जरिया बन सकता है। जम्मू रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीम सैनतूती ने पुलिस अफसरों की एक मीटिंग में खित्ते की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। आईजीपी ने अमन अमान को बरकरार रखने और सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों और फोर्सेज के माबेन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर डॉ रफीक मसूदी के चाचा गुलाम हसन मसूदी इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन और दीगर कई तंजीमों ने अफसोस का इजहार करते हुए डॉ रफीक मसूदी के साथ हमदर्दी जाहिर की है। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जन्म जयंती है। इस सिलसिले में मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्कद हुए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर रविन्द्रनाथ टैगोर की अदबी और सामाजिक खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने उन्हें एक अजीम दानिश्वर, शायर और मुफक्किर करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो रियासत में 15 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत के कलीदी रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA के एहतमाम से आज पूरे मुल्क में रवां साल की दूसरी कौमी लोक अदालतों का एहतमाम हुआ। जम्मू कश्मीर में भी यूटी के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली की निगरानी में लोक अदालतें मुनाकिद हुई। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एहतमाम से मुनाकिदा लोक अदालत का इफ्तिताह अथॉरिटी के सरपरस्त आला जस्टिस संजीव कुमार ने किया। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:34 और ग्रोब आफ्ताब शाम 7:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: सामीन आदा, आज का तबसरा लेकर मैं गुलजार अमीन। हमारे मुल्क में सबसे अहम इदारा हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में जिस सियासी पार्टी की अक्सरियत होती है उसी की ही हुकूमत होती है। इस तरह से हुकूमत यानी गवर्नेंस की जिम्मेदारी इसी सियासी पार्टी की होती है। मगर हमारे इस पार्लियामेंट में एक और निज़ाम है जिसके जरिए पार्लियामेंट बराह रास्त अपने मेंबरान से अवामी मसाइल, उनके लिए शुरू की गई स्कीमों, उनके समाजी और माशी हालात के बारे में आगाही हासिल करती है और ये निज़ाम पार्लियामानी कमेटियों का है। ये कमेटियां हमारे मुल्क में जमहूरी तर्ज हुकूमत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये कमेटियां मिनी पार्लियामेंट के तौर पर काम करती हैं और कानून साजी, मालियाती और इंतजामी उमूर की तफसीली जांच में मदद करती हैं। गवर्नेंस के बारे में फीडबैक हासिल करने, नीज किसी खत्ते और अवामन्नास की राय हासिल करने के लिए इन कमेटियों के मेंबरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं। माली उमूर से मुतल्लिक कमेटी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान इस कमेटी ने यहाँ की माली और माशी मसाइल का जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में कमेटी मेंबरान से सियाहत, तवानाई और इलाकाई तरक्याती तरजीहात पर गुफ्तगू की। तवानाई शोबे के लिए इन मेंबरान ने बुनियादी ढांचे की मजबूती और जम्मू कश्मीर سامعین میں قابل تجدید توانائی میں ممکنہ ترقی کے بارے میں بات چیت کی اور عوامی نمائندوں کے ساتھ اپنے اجلاس میں اس کمیٹی نے معاشی ترقی کو اور زیادہ مستحکم

जय हिंद दोस्तों, आज का ये खास प्रोग्राम हमने पेश किया है शहंशाह गजल तलत महमूद के नाम। तलत साहब की मखसूस थरथराती आवाज में वो जादू था जो सीधा दिल में उतर जाता है। इनके गाए हुए फिल्मी नगमे आज भी इतने ही ताजा और पुर असर है। तो आइए इस सुहानी रात में तलत महमूद की मखमली आवाज का लुत्फ उठाते हैं।

अभी आपने ऐसी एक लाजवाब गीत को सुना, जब मोहब्बत में अल्फाज कम पड़ जाए तो ये धुन दिल की बात कह देती है। दोस्तों, फौजी जिंदगी में तन्हाई के लम्हे भी आते हैं, और ऐसे ही किसी शाम के नाम ये अगला गीत तलत साहब की आवाज का दर्द इस गाने में नुमाया है।

दोस्तों कहते हैं तस्वीर में अपनों को याद करना भी एक सुकून देता है। आइए सुनते हैं फिल्म बरादरी का ये मशहूर गीत।

दोस्तों, अगर तलत महमूद के सबसे मशहूर गीतों की फहरिस्त बनाई जाए तो फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये नगमा सरफहरिस्त होगा। इस गीत ने तलत साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया था। आइए सुनते हैं ये शाहकार तख्लीक।

0: वाली प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार नवान्न में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि

दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए

0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताज़ा घटनाक्रम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांध्र कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में TV के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, VCK, IUML और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे।

0: Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। पांच अरकाने असेंबली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिनभर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर आर एन रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा पांच काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्नि मित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानूनसाज असेंबली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाकये के तहत आज एसआईआर के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड आईएएस अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के आईएएस अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में तमिल गवयत्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामनिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिनों को चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था, क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मदू किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। डीएमके पार्टी से इतिहास से अलीहदा होकर कांग्रेस ने टीवी के पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआई की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।

मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज टू में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारत
1: मीडिया में भी का अच्छा आकाशवाणी करगिल नजरन चीन वक्स पोस हनी तो सो तुर्गुना फेसों सुख कसता प्रोग्राम यन मजात नी फायल प्रोग्राम सिर्फ तंसे प्रचुकन पीन मोहम्मद हसन अस्करी

Bakshi